0: ती कसे रंग चने या बंगू दी
1: मंद जे मो
0: पालिंग दा लामा दी के पाला ला सुधान न्यूश पालिंग दा जेन दे शिंग दा
1: गु दा चंग जून रंग या लें या के चेन मे बजा जे बे
0: ती कसे रे
1: मु दी के किन्ने चूं Tengge rangka kapa gebunya kojo, tengge rangka soran dos tengsi.
0: Hah, rangka nimto tak harap tiapri. Tungto sing nimto eh, sing kuat dige sing, sing mokat dige sing mokri.
1: Ngah rang cuito cinto nimto ini.
0: Kacau so.
1: Ngah cima rang zongka na tua cuito nimto.
0: Hah, zongka na tua yang kisah. Rangka ngah ya hushi pichu doa. Ngah zongka jua momo kiri. Nya rang siu.
1: 其实我总该去比呢
0: 소주용기 블록네 말라라 교쇼샤 김세 카리메 다티시모소
2: 근데 세브레
0: 제사 대원가 주시 도체비 소저디 난지용네 교쇼다 양자소야기 제시마슈리 네트젤라야 카리네
2: 후조피게 근데도
0: 후조비게 네트라샤 렌삼샤샤
2: 렌삼샤샤이
0: 어
2: 근데 세브레 요나 랑게 세베 소저디 르게 초유스도 네즈디데 그데 스라브레
1: 当我刚到了可真是要不然你要留意一下下他大姐先不得这急着我说着忙自己当不是吧他这说是才干是不一呢没做可真是要不然啊退出个节省不是呗光不说退出多巴黎差不多光不说是了不可巧的他不是带的开启学历罢了成全给谁了才过几天给团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体团体
3: 你英国去杨明的李成军给其他学校用呢
2: 用啊要他让约起的
3: 今年里了学了李成军也给他用了